सर्वथा और सर्व स्थानों पर पूजित हैं। माता दुर्गा देवताओं की शक्ति में है, भक्तों की भक्ति में है।